0: रेडियो सारंग 107.8 FM
1: 107.8 FM रेडियो सारंग 107.8 FM रेडियो सारंग ईगा ऐप नल्लू कूड़ा लभ्य.

0: हेलो
1: हेलो, कैन यू हियर मी?
0: हेलो
1: हेलो मैडम, कैन यू हियर मी? हेलो
2: हेलो टेस्ट।
1: आप तेरा मैं सॉरी।
2: हेलो
1: सर कॉल नहीं बड़ी यार मेरा मूड है
2: हेलो,
1: कट गया ना
2: इट्स कट मी दिस।
1: अरे ये अच्छी बात है कट कॉल कट के रिकॉल कर दे
2: रो रो उनचूर
1: वन
2: ஏ ரவி எங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் கேன்னு

खिल के तेरा बदन महको अंगों से तेरे धस पर से मेरे होश लिए जाते हैं गवार तेरे कंगना।

0: alle nanna lucky star.
1: Hero, handsome hero, rebel star.
2: आप सुन रहे हो रेडियो सारंग 107.8 FM.